0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahimyakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100. FM 100's time check. It's 7 a.m. This public service message is brought to you by FM 100. गाड़ी चलाते वक्त ये ना सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
1: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
2: FM247365
3: Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
2: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: at 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरूने मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: It's 8:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
1: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
0: This program is brought to you by
3: Shaukat Khanum Karachi Ki Takleef
0: and Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeetta ja
4: and Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
0: and
5: Tabal Family Mixture laye Umrah par jaye
0: and
1: HBL Freedom Account jahan khwab wahan HBL.
6: FM 100. Like us on Facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
1: खालिस अज्जा, भरोसे मंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
2: सर सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिंसों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनामात जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: उम्र जीतने का मौका सिर्फ डाबर रेड टूथपेस्ट के साथ। डाबर रेड टूथपेस्ट खरीदे, पैक पर मौजूद QR कोड स्कैन करें, अपनी डिटेल्स रजिस्टर करें और जीतिए उम्र और बेशुमार कीमती इनामात हर हफ्ते। डाबर रेड टूथपेस्ट, 7 डेंटल प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन।
5: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
6: शौकत खानम, कराची की तकलीफ।
2: And सर सब नाइट्रो फॉस को लगा और जीतता जा।
7: And फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
2: And
8: टबाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उम्राह पर जाएं।
0: And HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
9: लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365 FM 247-365

0: एक चूंटी जितनी हैसियत है तुम्हारी, यूं मसल के फेंक भी दूंगा ना, कोई ढूंढ नहीं पाएगा तुम।
1: अम्मी, तुम्हारे भाई ने गुनाह किया और उसकी सजा उससे मिलकर रहेगी।

0: It's 8:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
1: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है. किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए. इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना.
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL. HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट
2: 100 FM।
0: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: This program is brought to you by
4: Shaukat Khanum, Karachi ki takleef
5: and Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja
6: and Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja
7: and Kabal Family Mixture laye umrah par jaye
0: and HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL।
2: FM 100, like us on facebook.com/fm247365
8: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
9: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab वहाँ HBL.
2: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
3: किसने कहा था पैसे बचा?

0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
1: This program is brought to you by
2: Shaukat Khanum, Karachi ki takleef
1: and
3: Sir Sabs Nitro Foss ko laga aur jeet ta ja
1: and
4: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja
1: and
5: Tabal family mixture laye umrah par jaye
1: and
0: HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL।

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
2: उम्रा जीतने का मौका सिर्फ डाबर रेड टूथपेस्ट के साथ। डाबर रेड टूथपेस्ट खरीदे, पैक पर मौजूद QR कोड स्कैन करें, अपनी डिटेल्स रजिस्टर करें और जीतिए उम्रा और बेशुमार कीमती इनामात हर हफ्ते। डाबर रेड टूथपेस्ट, 7 डेंटल प्रॉब्लम्स का एक सलूशन।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: शौकत खानम कराची की तकलीफ
3: एंड सर सब नाइट्रो फॉस को लगा और जीत ताजा
5: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा
3: and
6: Tabal family mixture line umrah par jaye
3: and
0: HBL freedom account jahan khwab wahan HBL
7: FM 100 like us on facebook.com/fm247365
8: fm 247365

0: 10:15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस फंड बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
3: किसी ने कहा था पैसे

0: This program is brought to you by
1: via telehealth पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं।
0: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
0: This program is brought to you by
2: via telehealth पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं.
3: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवजा तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. حکومت پاکستان.
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 ایف ایم 24/7/365

से लेके मैं दोषियों तक अफसोस नहीं के अफसाने लिखे वो अफसाने मबनी अब जिंदगी पर खुदा तू देता है बेहिसाब मेरे दर्द में थोड़ी तो कमी कर खिले ना क्यों यहाँ अंगों गुलाब फिर वही बहार की कमी बस किस्मत हमारे ही हाथ में है उसके इख्तियार की है कमी बस वो लोग भी गुजर गए वो घर भी जल चुके वहाँ कुछ नहीं वहाँ से अब दर्द उठे जख्म तो भरेंगे दोस्त वक्त की मरहम में शिफा है पर वक्त पे रहे मैं दोस्त वो कब किसी के लिए रुका है झुके ना सर फैले ना हाथ हमारे बस यही दुआ है कभी कभी आए सोच जो हुआ वो ठीक ही हुआ है सबक से सबक जो मिले हैं सबक से अब मेरी सुलह है कि कोई नहीं अगर तेरा तो मेरी

0: कोई नहीं अगर तेरा तो मेरी जान खुदा है।
1: पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बहुत सी औरतों को माली, जिस्मानी, जहनी और जिनसी घरेलू तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है। चाहे आप किसी के शौहर, वालिद, भाई या बेटे हों, अपना स्ट्रेस और फिक्र को अपनी बीवी, बेटी, बहन या वालिदा पर हरगिज ना निकालें। हुकूमत पाकिस्तान ने घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली औरतों के लिए खुसूसी हेल्पलाइन 1099 के साथ हेल्पलाइन 1099 ऐप का आगाज किया है, ताकि हमारे इदारे उनकी भरपूर मदद कर सकें। अगर आप या आपके जानने वाले घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं, तो फौरी तौर पर हेल्पलाइन 1099 ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें। होम स्क्रीन पर अपना नाम, फोन नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करके साइन अप करें। हंगामी हालात की सूरत में जहां आपकी या किसी की जान खतरे में हो, लाल बटन का इस्तेमाल करें, जिससे मुतल्लिका इदारे आपकी मदद के लिए फौरी हरकत में आ जाएंगे। तफसीली शिकायत के लिए सब्स बटन का इस्तेमाल करें, जिसमें आप तहरीरी शिकायत के साथ वीडियो, तस्वीर और ऑडियो सबूत भी जमा कर सकते हैं। याद रखिए, घरेलू तशद्दुद कानूनन जुर्म है और हम सबको मिलकर इसे रोकना है। तशद्दुद से तहफ्फुज आपका हक है। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: 100 FM।
4: हाय फ्रेंड्स, I am Mikal Zulfikar, and today I am not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: पाकिस्तान में व्हाट्सएप हैकिंग के वाकयात में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। रोजाना आम शहरी, बुजुर्ग, खवातीन, तुलबा और कारोबार से वाबस्ता अफराद अपने व्हाट्सएप अकाउंट से महरूम हो रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको दो अहम बातों पर रहनुमाई फराहम करेंगे। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो इसे वापस कैसे हासिल किया जा सकता है, और मुस्तकबिल में व्हाट्सएप को दोबारा हैक होने से कैसे महफूज रखा जा सकता है। आइए देखते हैं व्हाट्सएप हैक कैसे होता है। पाकिस्तान में आमतौर पर व्हाट्सएप हैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके। आपको व्हाट्सएप या किसी करने वाले के नाम से पैगाम आता है कि आपका अकाउंट वेरीफाई करना है, या ये 6 हिंसों का कोड भेजते। बाज़ औकात ये पैगाम किसी दोस्त या रिश्तेदार के नंबर से आता है, जिसका अकाउंट पहले ही से हैक हो चुका होता है। लोग लाइल्मी या जल्दी में 6 हिंसों का तस्दीकी कोड शेयर कर देते हैं। बस इसी एक गलती से हैकर आपके व्हाट्सएप का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेता है। याद रखे, व्हाट्सएप का तस्दीकी कोड कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता। ना व्हाट्सएप खुद मांगता है, ना कोई अदारा और ना कोई दोस्त। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो जाए तो फौरन क्या इकदाम उठाने चाहिए? अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो घबराए नहीं, अपने मोबाइल फोन से व्हाट्सएप डिलीट करें और दोबारा इंस्टॉल करें। साथ ही अपने दोस्तों और खानदान को किसी और नंबर से इतला दें कि अगर आपके नाम से कोई मशकूक पैगाम आए तो इस पर हरगिज यकीन ना करें। अपना वही मोबाइल नंबर दर्ज करें जो व्हाट्सएप पर रजिस्टर्ड था। व्हाट्सएप आपको SMS या कॉल के जरिए 6 हिंसों का तस्दीकी कोड भेजेगा। ये कोड दर्ज करें। ज्यादातर केसेस में इसी मरहले पर हैकर की रसाई खत्म हो जाती है, क्योंकि व्हाट्सएप एक वक्त में सिर्फ एक डिवाइस को इजाजत देता है। अगर तस्दीकी कोड ना आ रहा हो या पिन लगा दिया गया हो, अगर हैकर ने आपके अकाउंट पर 2-स्टेप वेरिफिकेशन पिन लगा दिया है और आप लॉगिन नहीं हो पा रहे, व्हाट्सएप आपको ऑप्शन देता है 7 दिन बाद दोबारा कोशिश करें। 7 दिन बाद व्हाट्सएप आपको बगैर पिन के लॉगिन करने की इजाजत देता है, लेकिन सिर्फ उसी नंबर पर। इस दौरान ये बातें लाजमी याद रखें। सिम कार्ड अपने पास और फॉल रखें। नंबर बंद या सस्पेंड न होने दें। व्हाट्सएप बार बार इंस्टॉल न करें। ईमेल के बगैर अकाउंट फॉल। अगर आपने ईमेल एड्रेस शामिल नहीं किया और पिन भी याद नहीं, व्हाट्सएप फिर भी 7 दिन बाद आपका अकाउंट फॉल कर देता है, बशर्ते कि सिम कार्ड आपके पास हो। सिम कार्ड सबसे अहम है। इजाफी तौर पर आप अपने नंबर और मसले की तफसील के साथ व्हाट्सएप सपोर्ट को ईमेल भी कर सकते हैं। राब्तों को फौरी इतला दें। अकाउंट बहाल होते ही अपने तमाम राब्तों को पैगाम भेजें, मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया था, बराहे करम पिछले किसी भी पैगाम या दरख्वास्त को नजरअंदाज करें। इससे आपके दोस्त और खानदान मजीद नुकसान से बच सकते हैं। अब देखते हैं मुस्तकबिल में हैक होने से खुद को कैसे बचाया जा सकता है। 2-स्टेप वेरिफिकेशन लाजमी फॉल करें। सेटिंग्स, अकाउंट, 2-स्टेप वेरिफिकेशन, यहाँ एक 6 हिंसों का पिन सेट करें जो सिर्फ आपको याद हो। ईमेल एड्रेस जरूर शामिल करें।

0: This program is brought to you by
1: Shaukat Khanam, Karachi Ki Takmeer.
0: And
2: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
3: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
4: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
5: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
4: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
5: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी। अपना BMI चेक करवाइए,
3: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें। वेट से आगे का सोचें।
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: It's 2:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: माहिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
0: This program is brought to you by
2: Shaukat Khanum, Karachi Ki Takni.
0: And
3: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
4: अभी राजा उस्ताद आ जाएगा, फिर मुझे कमरे में ले जाकर गलत तरीके से हाथ लगाएगा और किसी को बताने से भी मना करेगा.
5: हमारे माशरे में जिंसी बदसलूकी के वाकयात सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं होते, बल्कि लड़के भी इसका शिकार होते हैं. लड़के और लड़कियों दोनों की हिफाजत का ख्याल रखें, दोनों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया. अगर कोई इनकी मर्जी के खिलाफ इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिंसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पे कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
6: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
7: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें. डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है. दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100.
8: FM 100. लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: FM 100's time check. It's 3 p.m. This program was brought to you by
1: Shaukat Khanam, Karachi Ki Takleef.
0: And
2: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
0: Like us on facebook.com/FM247365.
3: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
4: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.
5: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
6: Assalamu alaikum, Pakistan.
7: One, two, three, hit it.
8: Everybody says,
9: Masti karne ka.
8: Everybody say joy.
10: Master in the house.
8: Come into my world.
10: Come and join it.
9: So listen to Music Must Be.
11: Music Must Be.
12: Assalamu alaikum Pakistan. Assalamu alaikum Karachi. आपका प्रेजेंटर महफूज उल हसन आपके साथ, और मैं नहीं कहते, कहते हैं आपके जब आते हैं महफूज तो 100% होते हैं आप महजूज, और आप नहीं कहते बल्कि कहता हूं मैं कि तुसी तो बड़े ही सोने हो। दोस्तों लेकर आपके लिए वही खूबसूरत सा प्रोग्राम जिसका रहता है आपको बेताबी, बेचैनी, बेसब्री, बेकरारी से इंतजार, और आपके बेकरार मन को आता है करार जब आता है एतवार, जिसे हम कहते हैं और मिलकर मनाते हैं संडे। तो संडे और फंडे आन पहुंचा है, हमारा आपका प्रोग्राम आन पहुंचा है जिसका हम सब मिलकर नाम लेते हैं, एंड द प्रोग्राम नेम इज म्यूजिक मस्ती और महफूज। म्यूजिक मस्ती और महफूज में आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं आपसे, लेकर ठीक 5 बजे तक हमारा आपका साथ रहेगा। इस साथ को यादगार, शानदार, खुशगवार आप सबने बनाना है, अपने मैसेजेस के जरिए बनाना है, फेसबुक के जरिए बनाना है, कुछ ना सही तो खामोशी से सुन के बनाना है। और हमारे पुराने दोस्त प्रोग्राम का फॉर्मेट अच्छी तरह से जानते हैं, रिक्वेस्ट शो है, फरमाइशी प्रोग्राम है, आप फरमाइश कर सकते हैं, 3 से 4 आप तेज गानों की कर सकते हैं, 4 से 5 आप सॉफ्ट मेलोडीज की कर सकते हैं, तरीकाकार आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन हमें नए दोस्तों को बताना पड़ता है। अपने राइट मैसेज में जाइए, के अजय लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए, 3636 पर रवाना कीजिए। इसके साथ साथ facebook.com/rjmehfooz पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको कौन सा गाना सुनना है। मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, आपके मैसेजेस का, आपकी फरमाइशों का, आपकी मोहब्बतों का और आपके जोश का। प्रोग्राम में शामिल करेंगे आपकी ही पसंद का पहला गाना। लास्ट प्रोग्राम में आपने फरमाइश की थी तो मैंने अपने प्रोग्राम का पहला गाना यही रख दिया है। पहला ट्रैक इज छलावा।

0: put your hands up. Gonna dance.
1: You're listening to Music Masti.
2: Music Masti.
3: All right, आ चुके हैं वापस, आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और मुझे कहते हैं महफूज। तो यकीनन आप प्रोग्राम सुनना शुरू कर दिया है आपने और सुनना भी चाहिए, आपका अपना प्रोग्राम है, आपका अपना आरजे है महफूज, आपका अपना एफएम 100 पाकिस्तान रेडियो स्टेशन है जिसे आपके लिए हम हमेशा सजा के रखते हैं जबरदस्त से गानों से, अपनी बातों से, आपके मैसेजेस से। और आपका जुड़ना हमारे साथ ऐसा है जैसे सोने पे सुहागा, जब आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो हमें कोई मसला नहीं होता, हम कहते हैं बस सारी जंग हम जीत जाएंगे। एफएम 100 पाकिस्तान का हमेशा साथ आपने दिया है और आप इंशाल्लाह देते रहेंगे, और इस प्रोग्राम का भी साथ आपने साला साल से दिया और आगे भी आप इंशाल्लाह देते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ के रहिए, अपने राइट मैसेज में जाइए, KHI लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए, लिख भेजिए हमें 3636 पर। इसके साथ साथ facebook.com/RJMahfooz पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप मेरी प्रोफाइल पे आएंगे तो पिक्चर स्टेटस मेरा लग चुका है, वहां पर आइए और बताइए कि आज सुबह से लेकर अब तक आप क्या कर चुके हैं, कल वीकेंड आपने गुजारा, आपने कैसा गुजारा, कल वेरी फर्स्ट वर्किंग डे है तो क्या प्लान्स हैं आपके, आज के इवनिंग की नाइट्स के क्या प्लान्स हैं, सारी बातें बताइए। सुबह नाश्ता क्या किया, दोपहर में खाना क्या खाया, डिनर में क्या आपके इंतजाम हैं, और इसके साथ साथ किसी की बर्थडे है तो आप बिल्कुल आप उसे विश कर सकते हैं, मुझे भी बता सकते हैं, मुझे भी मौका मिलेगा किसी को बर्थडे विश करने का। इसके साथ साथ कोई और अच्छा अच्छी बात है, इवेंट है, आप मुझे जरूर बताइए, मैं आपके लिए ऑन एयर पढ़ूंगा, किसी को डेडिकेट करना है गाना, तो हर बात आप कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म से, इस एफएम 100 पाकिस्तान से जिसका दरवाजा आपके लिए 24 घंटे खुला रहता है। चलिए जी, आपके लिए हम शामिल करेंगे एक और जबरदस्त गाना खास आपके लिए, आपकी फरमाइश आपके लिए पेश कर दी गई है, एंजॉय कीजिए अपनी फरमाइश को, जिसने भी ये फरमाइश की है, और उसके साथ साथ मैसेजेस कीजिए और सुनते रहिए एफएम 100 पाकिस्तान।

0: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? Schwabe सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और Schwabe सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं फिर से रहमो चाचा, अपना डांगा लेकर ना आ जाए. वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे. मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ.
3: आमतौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है. दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं. बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है. आए इसे यकीनी बनाए. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पर कॉल करें. वज़ारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
4: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
5: FM 100 like us on facebook.com/FM247365.
6: You are listening. Music. Musti. Musti.
7: जी मेरे दोस्तों, आ चुके हैं वापस. आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और मुझे कहते हैं महफूज. मस्ती जारी हो सारी है. संडे है और संडे को फंडे बनाने के लिए आप लंच में या डिनर में संडे बिरयानी भी खा रहे होते हैं. बिरयानी की बात, लेकिन FM 100 का पाकिस्तान का प्रोग्राम है. म्यूजिक मस्ती और बिरयानी की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता. अच्छा, मैं बिरयानी खाए हुए एक मतलब हम एक जमाने से बिरयानी खा रहे हैं, आप भी खा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि बिरयानी की तारीख भी पड़ी जाए कि बिरयानी जो है यही कहां से है. कुछ ना कुछ मैं भी पढ़ूं, कुछ ना कुछ आपसे भी शेयर करूं. जब मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि लफ्ज बिरयानी पर्शियन जबान के दो लफ्जों से निकला है. एक बिरियन, जिसका मतलब है भुना हुआ या फ्राई करने से पहले वाला, और ब्रिन, जिसका मतलब है चावल. तो असल मतलब यह हुआ कि भुने हुए चावल. बिरयानी का असल मतलब हुआ भुने हुए चावल. इसकी शुरुआत कहां से हुई? कहते हैं कि इसके जो है ना दो मशहूर थ्योरीज हैं, लेकिन सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये पर्शियन और हिंदुस्तानी खानों का फ्यूजन है, यानी कि मिलाप है. सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी मुगल वाली है कि जदीद बिरयानी जो है वो मुगल शाही बावर्ची खानों में सबसे पहले बनी है, जहां पर्शियन मसाले और हिंदुस्तान के जो तेज मसाले हैं वो मिलाकर और चावल के पकवानों से हुआ और यही शाही डिश बन गई, यानी थोड़ी तीखी हो गई. और दूसरी थ्योरी ये कहती है कि अरब और पर्शियन ताजिर अपने साथ पुलाव की शक्ल में ये बर्रे सगीर लेकर आए और वक्त के साथ साथ मकामी मसालों से मिलकर ये बिरयानी बन गई. देखिए बिरयानी कैसे बन रही है, आप देखिए कहां से निकली हो और कहां तक पहुंच गई. भुने हुए चावल से अब वो बिरयानी बनने की अमल में पहुंच गई है. इसमें एक मशहूर किस्सा ये भी ऐड किया गया कि मुमताज महल को आप जानते हैं जी, जिनके नाम पर ताजमहल है. कहते हैं मुमताज महल ने जब फौजियों की कमजोरी में देखा कि उनके फौजी कुछ कमजोर नजर आ रहे हैं, तो बावर्चियों से कहा कि चावल और गोश्त का ऐसा मुकम्मल ताकतवर पकवान बनाओ जो सिपाही खाएं उनको एनर्जी मिले. तो वहां से बिरयानी का एक्चुअल कॉन्सेप्ट शुरू हुआ कि गोश्त वाली बिरयानी. इसके अलावा मुगल दरबारों से निकलकर डिश जो है वो नवाबों तक पहुंची, फिर मुख्तलिफ इश्काल बनी इनकी, जैसे हैदराबाद बिरयानी है, निजामों की कच्ची यखनी वाली दम बिरयानी, लखनऊ की अवधी बिरयानी है, हल्के मसाले वाली यखनी वाली तह वाली बिरयानी, कलकत्ता की बिरयानी है, नवाब वाजिद अली शाह ने कलकत्ता में ये बनवाई है, जिसमें आलू को शामिल किया गया क्योंकि गोश्त बहुत महंगा था. आलू भी शामिल हो गया बिरयानी में इसलिए कि गोश्त महंगा था. इसके अलावा मलबार और सिंध और कराची बिरयानी तेज मसाला दही और आलू बुखारे के साथ. तो ये एक्चुअली बिरयानी की जो है तारीख है जो मैंने अभी कुछ दिनों पहले पढ़ी. मैंने सोचा कि आपको भी जरूर बताऊंगा कि बिरयानी कहां से वो بھنے ہوئے چاولوں سے اس میں کیسے گوشت ایڈ ہوا, کیسے آلو بخارا, کیسے آلو اور کیا کیا چیزیں ہوئی ہیں. بریانی دیکھیں, میں اسی لیے کہتا ہوں نا کہ بریانی کی ایک تاریخ ہے. مجھے ایسی بریانی پسند نہیں ہے, مجھے ویسی لوگ پسند ہیں کہ جن کی کوئی تاریخ ہوتی ہے. تو بریانی کی آپ دیکھیں کیسی تاریخ نکلی ہے. Alright, اپنے رائٹ میسج میں جائیے کہ اچھا لکھیے, اپنا میسج ٹائپ کیجیے, لکھ بھیجیے ہمیں 3636 پر. اس کے ساتھ ساتھ facebook.com/rjmehfooz.

0: listening to Music Masti.
1: मंजिल अभी बाकी है और सफर रवां है। इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की की रफ्तार को तेज करने के लिए सिंध हुकूमत ने जदीद शाहराहों, पुलों और राबिता सड़कों का

0: You are listening to Music Masti. Masti. Masti.
1: All right, आ चुके हैं वापस. आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और मुझे कहते हैं महफूज. आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान और मैं हमेशा आपके साथ साथ रहता हूं. हर इतवार दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक FM 100 पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म से, जो कि आपका अपना है और साल साल से हम आपके साथ यहां पर मौजूद हैं. सर्दी, गर्मी, खिजा, बहार, बारिशें, आंधी, तूफान, स्ट्राइक, कर्फ्यू, इसके बावजूद भी FM 100 पाकिस्तान 24 घंटे की नशरियात आपकी समाप्त की नजर. मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ लिसनर्स, मुख्तलिफ जॉनरास को सुनने वाले. कोई तेज गानों को सुनता है, कोई सॉफ्ट मेलोडीज को सुनता है, कोई गजल सुनता है, कोई सूफियाना कलाम सुनता है, कोई कुछ नहीं सुनता तो सिर्फ और सिर्फ आरजेएस की बातें सुनता है. रात की नशियात आप सुन रहे होते हैं, रिलीजियस ट्रांसमिशन आप सुन रहे होते हैं, तो हर तरह से हमने आपको बांध के जोड़ के रखा है. और हमेशा से हम आपकी राय का बड़ा एहतराम करते हैं. आपकी तारीफ और तनकीद हमारे लिए बड़ी अहमियत की हामिल है. सिर्फ तारीफ के हम भूखे नहीं हैं. आप तनकीद करते हैं तो हमें पता है कि आप इसलाह करते हैं, आप बताते हैं कि भाई ये चीज सही नहीं है, इस चीज को ऐसे कर लें. माशाल्लाह से आप लोग पढ़े लिखे, अक्ल फहम वाले हैं, एक जमाने से FM 100 पाकिस्तान के लिसनर हैं. हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है तो हमारा साथ देते रहिए. एक और जबरदस्त से गाने की तरफ हम चलेंगे. आपकी ही फरमाइश है और हम पूरी करने लगे हैं. रागेज पीला रंग.

ओके जी, म्यूजिक मस्ती और महफूज आप हमारे साथ साथ मौजूद हैं। जबरदस्त से गाने आप सुन रहे हैं, साथ साथ आपसे ढेर सारी बातें भी हो रही हैं। हमारा प्रोग्राम बड़े भी सुनते हैं, हमारा प्रोग्राम बच्चे भी सुनते हैं। वक्त निकाल के यकीनन सुनना चाहिए। FM 100 पाकिस्तान तो सबका है ना, बड़ों बच्चों सबका है। कल से स्कूल आपके हैं, कल से कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, और आप अपने छुट्टियों के जो दिन हैं वो यकीनन गैजेट्स पे गुजारते हैं, मोबाइल पे गुजारते हैं, टैब्स पे गुजारते हैं, प्ले स्टेशन आपके पास हैं। पुराने वाले खेल तो है ही नहीं ना जो हमारे बचपन में खेल हुआ करते थे। आए हाय, जब वो खेल याद आते हैं तो बचपन आंखों के सामने आ जाता है और वो मजा आंखों के सामने आ जाता है। ना कोई मोबाइल, ना कोई टैब, ना किसी प्ले स्टेशन की जरूरत। बस मोहल्ले के जो हमारे दोस्त यार मिल जाते तो फिर वहां खेल शुरू हो जाता था। पिट्टू बारी या पिट्टू गरम शुरू हो जाता था ना। पत्थरों का मीनार बनाइए, उसके बाद पत्थर को आप बॉल से गिराइए, उसके बाद कि आप बॉल लेकर पीछे घूमिए। वो चिपकती बहुत जोर की थी, पड़ती बहुत जोर की थी। बर्फ पानी होता था ना, एक ने छू लिया दूसरा बर्फ, तीसरा फिर आगे उसको पानी कर देता था। लुका छुपी या छुपन छुपाई वगैरह होती थी, स्पेशली जब लाइट वगैरह चली जाती थी उसको भी लोग इन्जॉय करते थे, लोड शेडिंग को इन्जॉय करते थे ना। लंगड़ी पाला वगैरह होता था, खो खो होता था, गिली डंडा होता था, कंचे लोग खेलते थे, लट्टू चलाते थे, जिसका देर तक लट्टू चल गया तो सामने वाले का लट्टू उसका हो गया। पतंगबाजी होती थी, और पतंगबाजी तो आज भी होती है लेकिन अब कम हो गई है। गुड्डा गुड़ियों का खेल होता था, ऊंच नीच, पकड़म पकड़ाई, चोर सिपाही, कितने सारे खेल होते थे ना। और ये वो खेल होते थे जो आपके जिस्म को मजबूत करते थे, सारे फिजिकल हुआ करते थे, आपके अंदर एक एनर्जी आती थी। जब आप भागते थे, आपके पीछे बॉल लेकर एक बंदा भागता था, आप आगे आगे भागते थे, है ना, होता था, मजा आता था ना। दिमाग तेज होता था, जिस्म मजबूत होता था। अभी आज तो कुछ भी नहीं है भाई, मोबाइल लिया, मोबाइल पे सब कुछ खेल लिया, क्रिकेट भी मोबाइल पे खेल लिया, फुटबॉल भी मोबाइल पे खेल लिया। लेकिन हमने जो खेल खेले हैं, क्या बात है जी, बचपन के खेल की बात कर रहा हूं भाई मैं। ओके जी, अपने राइट मैसेज में जाइए, KHI लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए, 36 36 36 पे रवाना कीजिए। इसके साथ साथ facebook.com/azmehfooz। फाखिर महमूद और जेब की आवाज, पश्तो वजन, दिल रुबाना राजी।

0: listening. Music. Musti.
1: जी मेरे दोस्तों, देखते ही देखते 3:55 हो चुके हैं. 3:55 इज द टाइम. और 5 मिनट और आ गए हैं जिसमें हमने आपके लिए तेज गाना प्ले करना है. उसके बाद सॉफ्ट मेलोडीज का सेगमेंट शुरू हो जाएगा 4 से 5. तो 4 से 5 भी आपने फरमाइश करनी है, हसीन तरीन गानों की फरमाइश करनी है, क्योंकि सॉफ्ट मेलोडीज पे मैं मरता हूँ, आप भी मरते हैं. मजेदार गाने होते हैं और फरमाइश आपकी बड़ी जबरदस्त होती है. अपने राइट मैसेज में जाइए, केचाई लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए और लिख दीजिए हमें 3636 पर. इसके साथ साथ facebook.com/RJ Mehfooz पर भी आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको कौन सी हसीन मेलेडी सुननी है, चाहे वो फिल्मी हो, चाहे नॉन फिल्मी हो, सूफियाना कलाम हो, सब कुछ आप फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ FM 100 पाकिस्तान के इस प्रोग्राम में जिसका नाम है म्यूजिक मस्ती. चलिए जी, आखिरी का तेज गाना आप सबके लिए हम पेश करेंगे, द पॉप क्वीन, नन अदर देन नाजिया हसन.

0: listening. You are listening. Music. Mastey. Mastey.
1: एक बार फिर तमाम सुनने वालों को महफूज की जानिब से अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप सब कैसे हैं? ठीक हैं, फिट फाट हैं और एफएम 100 पाकिस्तान आप सुन रहे हैं। 3 बजे से हमारे साथ मौजूद हैं और अब 4 बजे से 5 बजे तक आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सॉफ्ट मेलोडीज आप फरमाइश करेंगे, बातें वही आप करेंगे जो आप करते आए हैं, खूबसूरत हसीन दिलकश दिलनशीन बातें। आप बताइए आपकी बर्थडे है, आप बताइए किसी को विश करना है, डेडिकेट करना है, कोई खूबसूरत सी बात, कोई शेर, कोई कोटेशन। ओपन प्लेटफॉर्म है, अपने राइट मैसेज में जाइए, कैशाएं लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए, 3636 पर रवाना कीजिए। इसके साथ साथ facebook.com/rjmehfooz पर मेरा पिक्चर स्टेटस लगा हुआ है। आइए और बताइए आपको कौन सा गाना सुनना है, अपने दिल की बात कीजिए और साथ साथ हसीन फरमाइशें। शिराज उपल की आवाज, ए दिल।

0: You are listening to Music Masti.
1: All right, दिल ये डांसर हो गया और आतिफ असलम की खूबसूरत सी आवाज आपने एंजॉय की. बारी है आपके मैसेजेस की. साथ हमें मैसेज कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, वालेकुम असलाम. आपने कहा शो इज गुड, बहुत शुक्रिया. आपकी फरमाइश मैंने नोट कर ली है, पूरी करने की भरपूर कोशिश करेंगे. फारूक हमें मैसेज कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, आप पहली मरतबा सुन रहे हैं और आपको खुशामदीद कहेंगे, बहुत शुक्रिया आपका. जैन हमें मैसेज कर रहे हैं, जैन थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी. वालेकुम असलम, हैप्पी संडे. आपकी फरमाइश मैंने नोट कर ली है, पूरी करने की हम कोशिश करेंगे. नईम हमें सुन रहे हैं, नईम थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी. वालेकुम असलम, आपकी भी फरमाइश हमने नोट कर ली है, पूरी करने की भरपूर कोशिश करेंगे. नादिया हमें सुन रही है, नादिया बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए. आपकी भी फरमाइश मैंने नोट कर ली है, इंशाल्लाह बिल्कुल पूरी करेंगे. अनवर हमें सुन रहे हैं, अनवर बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए. वालेकुम असलम. रहीमा हमें सुन रही है, रहीमा थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड वालेकुम असलम. फरिया हमें सुन रही है, फरिया वालेकुम असलम, शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए. और तारिक हमें सुन रहे हैं, तारिक बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमें सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच. चले जी, एक जबरदस्त सा गाना आपकी समाध होगी, हम नज़र करेंगे बाय राहत फतेह अली खान एंड द ट्रैक इज दिल फकीर तेरे लिए हुआ है.

ऑलराइट, आज के वापस आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और मुझे कहते हैं महफूज। आप हमें सुन रहे हैं जनाब 100 की फ्रीक्वेंसी पे, यानी रेडियो सेट्स पे सुन रहे हैं। इसके साथ साथ रेडियो सेट्स के अलावा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप हमें सुन रहे हैं वेबसाइट पे fm100pakistan.com। अगर आप एप्पल यूजर हैं, एंड्रॉयड यूजर हैं, मोबाइल आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप fm100pakistan एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, बआसानी आप हमें सुन सकते हैं, अपने अपने वक्त के मुताबिक सुन सकते हैं। अगर आप मेरी पर्सनल फेसबुक आईडी पर मुझे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप मेरी पर्सनल फेसबुक आईडी पर मुझे ऐड कर सकते हैं। facebook.com जहां लिखते हैं वहां facebook.com के बाद /लगाइए, आरजे महफूज लिखिए, क्लिक कीजिएगा, आप डायरेक्ट मेरी प्रोफाइल पे आ जाएंगे। दूसरा रास्ता यह है कि फेसबुक पे जाइए, आरजे महफूज सर्च कीजिए, मेरी प्रोफाइल पे आ जाएंगे। इसके साथ साथ इंस्टाग्राम अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, तो आरजे महफूज है, RJMAHFWZ। यूट्यूब अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो चैनल का नाम है फन विद महफूज, चैनल का नाम फन विद महफूज, FUNWITHMAHFWZ, फन विद महफूज चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आती रहे। लाइक कीजिए, शेयर्स कीजिए, और अभी के लिए आप मुझे मैसेज करना चाहते हैं, तो अपने राइट मैसेज में जाइए, KHI लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए, 3636 पर रवाना कीजिए। इसके साथ साथ facebook.com/RJMahfooz पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए।

0: नजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी लियारी, बेगम नुसरत भुट्टो वेमेन यूनिवर्सिटी सक्खर, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद और अरोर यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट आर्किटेक्चर डिजाइन हेरिटेज, शहीद बेनजीर भुट्टो गर्ल्स कैडेट कॉलेज लाड़काना और बख्तावर कैडेट कॉलेज फॉर गर्ल्स, खुसूसी अफराद को बाख्तियार बनाने के लिए स्पेशल एजुकेशन, बहाली, हुनरमंदी और खुद मुख्तार जिंदगी के मौके को मजीद वसअत दी गयी। खैरपुर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, साइड कराची, नूरियाबाद, बिन कासिम और दीगर सनती जोन्स में बुनियादी सहूलियात बेहतर बनाकर मुल्की और गैर मुल्की सरमाया कारी को फरोख दिया जा रहा है। ज़रई खुशहाली के फरोख के लिए सिंध हुकूमत ने किसान दोस्त मंसूबों का एक जामे सिलसिला शुरू किया। बेनजीर हारी कार्ड के पहले मरहले में तकरीबन 2,98,000 रजिस्टर्ड किसानों को बीज, खाद, ज़रई अद्वियात, जदीद मशीनरी पर सब्सिडी, रियायती कर्जे, फसल बीमा और कुदरती आफात की सूरत में माली मुआवनत फराहम की जा रही है। पानी के हर खतरे को कीमती सरमाया बनाते हुए लाखों एकड़ ज़रई अराजी को दोबारा पैदावारी अमल से जोड़ा जा रहा है। ये सिर्फ मंसूबों, आदाद और शुमार या तामीरात की दास्तान नहीं, खुशहाली को सिंध के हर शहर, हर गांव और हर खानदान तक पहुंचाने के अज़्म की रोशन अलामत है। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
1: कपाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास। उमरा लिखे 02111182725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। कपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं।
2: FM 247365
3: You are listening. Music. Masti.

ऑलराइट, आ चुके हैं वापस, आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और मुझे कहते हैं महफूज। वक्त बहुत तेजी से गुजरता है, आप देखिए ना, तपतर धड़ाधड़ वक्त तेजी से गुजर रहा है। पहले एक घंटा हुआ, फिर डेढ़ घंटा हुआ, अब देखिएगा थोड़ी देर के बाद पूरे पांच बज जाएंगे। आपकी फरमाइशें बड़ी जबरदस्त हैं और आज के ये गाने बहुत अच्छे हैं और हमें प्ले करने में भी मजा आ रहा है, सुनने में भी मजा आ रहा है, आपको भी यकीनन सुनने में मजा आ रहा होगा। जब आप सॉन्ग्स की फरमाइशें करते हैं तो बड़े चुन चुन के सॉन्ग्स की फरमाइशें करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं कि आपको किस तरह का गाना सुनना है, क्योंकि आप जो गाना सुनते हैं वो एक्चुअल आप नहीं सुन रहे होते हैं, सब सुन रहे होते हैं। तो आपकी रेपुटेशन भी होती है, एफएम पाकिस्तान प्लेटफॉर्म है, उसकी भी एक रेपुटेशन है, साक है। तो आप उसी तरह के गानों की फरमाइश करते हैं कि जो तमाम लोग आसानी से सुन ले और एंजॉय करें। आपने राइट मैसेज में जाइए कि चाहे लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए और 3636 पर रवाना कीजिए। इसके साथ साथ facebook.com/rjmehfooz। एक बड़ा ही जबरदस्त कॉम्बो आपको सुनवाने लगे हैं, राहत फतेह अली खान और अबरारुल हक की आवाज, और ट्रैक का टाइटल है तस्वीर।

0: You are listening to Music Masti.
1: Alright, वक्त खत्म हुआ चाहता है, आपसे इजाजत लेने का वक्त आन पहुंचा है. जहां रहे खुश रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, दूसरों को रखें खुश, बड़ों का करें अदब, छोटों से करें प्यार, अपने वतन का अपने परचम का करें एहतराम. और भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, महफूज करें फंडेड पाकिस्तान को, रखें अपनी दुआओं में जरूर जरूर जरूर जरूर याद. अगर आपके वालिदैन हयात हैं, उनसे मोहब्बत कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए, क्योंकि दुनिया में यही आपकी जन्नत है, ऊपर जन्नत का वसीला. मेहरबान हो के बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूं कि फिर आ भी न सकूं. जिंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले इतवार, नेक्स्ट संडे दोपहर 3 बजे. जाते जाते एक बहुत ही खूबसूरत सा कलाम आपकी समातों की नजर करेंगे. चाहेंगे आपसे इजाजत. थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड फाइनली अल्लाह हाफिज़.

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैयां।
1: हुर्मते रसूल का तकाजा है कि तौहीन रिसालत से मुतालिक किसी भी खबर को बिना किसी तस्दीक के ना फैलाएं। ये पैगाम मुफादेआमा के लिए वजारत इत्तिलात व नशरियात व कौमी विरसा और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
1: कुरानी आयात और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295B के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिले सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
3: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, रहीमपुर खान, अक्रॉस द नेशन,
4: दिस इज FM 100, FM 100, 100.
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
5: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
7: सर सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनाम जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूम के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा।
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
8: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
9: शौकत खानम, कराची की तकलीफ।
10: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
11: सब मुड़ के देख रहे हैं।
12: ऑफ कोर्स, इट्स द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड, ग्रैंड, बोल्ड एंड हार्ड टू मिस।
13: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है।
12: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
13: Achhi hai, par mujhe to 8-seater chahiye thi.
12: Ji, Begum Sahiba, aapke liye Palisade Smart order kar deta hoon. Isme 8 seats ka option hai.
13: Yani family ke liye bhi perfect aur no compromise on looks. Ab samajh aaya, sab kyun dekh rahe the?
12: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
14: Step School se foundation ho strong. Step Schools de raha hai modern new age education, which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
15: Kya kaha? EV bike jeetne ka mauka. जी हाँ, मंडे से संडे किसी भी 3 दिन इजी पैसा QR से पेमेंट करें और पाएं ईवी बाइक जीतने का मौका, साथ ही साथ 100 रुपए का गारंटीड कैशबैक। तो फिर देर किस बात की, आज ही इजी पैसा QR स्कैन करें। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय सरसब्स नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा
1: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
2: एंड वी आर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं
3: एंड
4: तबाल फैमिली मिक्सचर लाएं उमराह पर जाएं
3: एंड
5: HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
6: कहीं अनजाने में आप दहशत गर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे होशियार रहें मोहतात रहें अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें हुंडी हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशत गर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है याद रखें دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے حکومت پاکستان
7: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور FM 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
8: 31 years of memory milestone and moments FM 100 پاکستان It's a legacy
9: السلام علیکم پاکستان Let's celebrate the journey

0: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
3: सब मुड़ मुड़ के देख रहे हैं.
4: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
5: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है.
4: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
5: अच्छी है, पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
4: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ. इसमें 8 seats का option है.
5: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स. अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे.
4: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर nearest Hyundai डीलरशिप. प्रीमियम हैज इट्स शेप.
0: This program is brought to you by
6: Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja.
0: And
7: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
0: And
8: we are telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye.
0: And
9: Dabal family mixture laye, umrah par jaye.
0: And
1: HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
10: Like us on Facebook.com/FM247365.
11: FM247365.

0: It's 5:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
1: 100 FM.
0: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account.
2: सब मुड़ मुड़ के देख रहे हैं.
3: Of course, it's the all new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
2: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है.
3: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual pane sunroof for a premium experience.
2: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
3: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart ऑर्डर कर देता हूँ. इसमें 8 सीट्स का ऑप्शन है.
2: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स. अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे.
3: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade Hybrid एट योर nearest Hyundai डीलरशिप. Premium has its shape.
0: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
4: Kya kaha? EV bike jeetne ka mauka. जी हाँ, मंडे से संडे किसी भी 3 दिन इजी पैसा QR से पेमेंट करें और पाए ईवी बाइक जीतने का मौका. साथ ही साथ 100 रुपए का गारंटीड कैशबैक. तो फिर देर किस बात की, आज ही इजी पैसा QR स्कैन करें. ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
5: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है. अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं. इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं. वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं. वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है. बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है. पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें. www.pta.gov.pk. मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
1: This program is brought to you by
6: सरसब्स नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा.
1: And
7: फिनिक्स लगा और भूल जा. फिनिक्स लगा और भूल जा.
1: And
8: वी आर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं.
1: And
9: कबाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं.
1: And
0: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
1: And
10: ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली.
11: ख्वाब तो सब देखते हैं, बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है.
12: हमने अपने आप को 3 बार मौत देखा.
13: टाइम से मनु ऐसे ही के मैं हूँ, कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा.
14: फिर उन्होंने वीडियो बनाया, सानू मारिया, सानू कुटिया.
11: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें.
15: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा.
11: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देबाप के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खसूसी टास्क फोर्स का क्याम. मुलगीर क्रैकडाउन जारी. एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमित किए जा रहे हैं. अंदरूनों बैरूने मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें. मकामात मुकद्दसा की ज्यारत को जाने वाले जायरीन भी कानूनी जराए इख्तियार करें. इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचें. ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुनें. हुकूमत पाकिस्तान.
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
16: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس، جیز کیش، ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائیکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل میڈیا یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے۔ ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں، جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں۔ اپنے بینک، مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں۔ اکاؤنٹس میں مضبوط سیکیورٹی فیچرز فعال کریں، جیسا کہ ٹو فیکٹر اتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز۔ ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے۔ بر وقت اور پیش کی اقدامات آپ کی شناخت، مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
17: facebook.com/fm247365 FM 247 365

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय सरसब्स नाइट्रो फॉर्स को लगा और जीत ताजा
1: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
2: एंड वी आर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं
3: एंड
4: टबाल फैमिली मिक्सचर लाएं उमराह पर जाएं
3: एंड
5: HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBF
6: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
7: FM247365 FM 100
8: 31 साल FM 100 आपकी आवाज
9: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान
10: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान पाकिस्तान

0: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस फंड बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
3: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं।
4: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
5: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है।
4: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
5: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
4: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ। इसमें 8 seats का option है।
5: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स। अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे।
4: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade Hybrid एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप। प्रीमियम हैज इट्स शेप।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
6: सर सब्स नाइट्रो फॉस को लगा और जीत ताजा
7: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
8: एंड वी आर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं
0: एंड
9: तबाल फैमिली मिक्सचर लाएं उमराह पर जाएं
0: एंड
1: HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
0: एंड
10: ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू नरिशेस हेयर नेचुरली
11: FM 100 like us on facebook.com/FM247365
12: FM 247365

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय सरसब्स नाइट्रो फॉस को लगा और जीतता जा
1: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
2: एंड वी आर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं
3: एंड तबाल फैमिली मिक्सचर लाएं उमराह पर जाएं
4: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
5: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
6: FM247365.
7: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking, aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
8: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है. किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए. इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना.
7: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
9: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं.
10: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
9: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है.
10: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
9: अच्छी है, पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
10: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ. इसमें 8 seats का option है.
9: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स. अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे.
10: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर nearest Hyundai डीलरशिप. प्रीमियम हैज इट्स शेप.
7: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहाँ HBL.
11: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला. मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ. यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ. तो फिर फोन हो तो 5G वाला. जैज 5G
5: 100 FM.
8: क्या कहा? ईवी बाइक जीतने का मौका. जी हाँ, मंडे से संडे किसी भी 3 दिन इजी पैसा QR से पेमेंट करें और पाएं ईवी बाइक जीतने का मौका, साथ ही साथ 100 रुपए का गारंटीड कैशबैक. तो फिर देर किस बात की, आज ही इजी पैसा QR स्कैन करें. ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
0: This program is brought to you by Sarsabs Nitro Foss ko laga aur jeetta ja
1: and Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
2: and we are tele health par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye
3: and
4: tabal family mixture laye umrah par jaye
7: and HBL freedom account jahan khwab wahan HBL
5: 100 FM.
12: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar. And today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
13: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
5: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: AM. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL. This program was brought to you by
1: Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja.
0: And
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
0: And
3: we are telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye.
0: And
4: Tabal family mixture laye, umrah par jaye.
0: And HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL. HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
5: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
6: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली.
7: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है.
8: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है.
7: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
8: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला.
7: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
9: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और वैश्यों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज. मजीद मालूमात के लिए अभी 1111-1425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें.
10: शराइत और ज़वाबित लागू है.
11: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन.
12: शौकत खानम, कराची की तकनीक.
13: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें.
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
14: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला. मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ. यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ. तो फिर फोन हो तो 5G वाला. जैज 5G.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां ख्वाब, वहां HBL.
15: जहां 5 दोस्त मिल जाएं, वहीं लाइफ है. और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस. 5 दोस्त, 1 पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग. अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से. जैज 5G.
4: तबाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास. उमरा लिखे 02111-82725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं. तबाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं.
16: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है. किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए. इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैज कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैज कैश है ना.
17: क्या कहा? ईवी बाइक जीतने का मौका. जी हाँ, मंडे से संडे किसी भी 3 दिन इजी पैसा QR से पेमेंट करें और पाएं ईवी बाइक जीतने का मौका, साथ ही साथ 100 रुपए का गारंटीड कैशबैक. तो फिर देर किस बात की, आज ही इजी पैसा QR स्कैन करें. ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
18: लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक.
19: उमरा जीतने का मौका सिर्फ डाबर रेड टूथपेस्ट के साथ. डाबर रेड टूथपेस्ट खरीदें, पैक पर मौजूद QR कोड स्कैन करें, अपनी डिटेल्स रजिस्टर करें और जीतिए उमरा और बेशुमार कीमती इनामात हर हफ्ते. डाबर रेड टूथपेस्ट, 7 डेंटल प्रॉब्लम्स का एक सलूशन.

0: This program is brought to you by
1: FPL Zari Banking के पास है पोल्ट्री फार्म फिश फार्म सरे यालात और मवेशियों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत
2: नशा न परेशानियां खत्म करता है इसका सरूर हमेशा रहता है ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो वालिदैन असातिजा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है नशे से इनकार जिंदगी से प्यार मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें
3: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया
4: FM 100 like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

0: It's 7:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix
1: laga aur bhul ja. Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom account.
2: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है. किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए. इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
3: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली.
4: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है.
5: खैर ही खैर है, HBL जरई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है.
4: HBL जरई बैंक की वजह से?
5: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के जरई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला.
4: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
6: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, जरई आलात और के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज. मजीद मालूम के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें.
7: शराय तो जवाबित लागू है.
1: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
8: अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला. मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ. यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ. तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G.
9: उम्रा जीतने का मौका सिर्फ डाबर रेड टूथपेस्ट के साथ. डाबर रेड टूथपेस्ट खरीदें, पैक पर मौजूद QR कोड स्कैन करें, अपनी डिटेल्स रजिस्टर करें और जीतिए उम्रा और बेशुमार कीमती इनामात हर हफ्ते. डाबर रेड टूथपेस्ट, 7 डेंटल प्रॉब्लम्स का एक सलूशन.
2: क्या कहा? ईवी बाइक जीतने का मौका. जी हाँ, मंडे से संडे किसी भी 3 दिन इजी पैसा QR से पेमेंट करें और पाएं ईवी बाइक जीतने का मौका, साथ ही साथ 100 रुपए का गारंटीड कैशबैक. तो फिर देर किस बात की, आज ही इजी पैसा QR स्कैन करें. ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
0: This program is brought to you by
6: HBL Zari Banking के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, जरा यालात और मवेशियों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत.
10: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है. अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं. इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फायदे जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं. वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं. वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है. बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है. PTA की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें. www.pta.gov.pk. मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
11: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत.
12: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे न लगाएं.
11: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता.
12: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ. हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
11: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ही कम नहीं।
7: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
12: सिर्फ बातें बनाने से हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते।
7: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
11: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
12: और इस वजन की असल हकीकत को समझिए।
11: आइए वेट से आगे का सोचें।
10: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
13: ईमेल हर अदारे के लिए एक इंतहाई अहम ज़राए इब्लाग है, लेकिन सिर्फ एक गलत क्लिक पूरे नेटवर्क को खतरे में डाल सकता है। साइबर मुजरिमों की जानिब से हुकूमती और निजी शोबे के मुलाज़मीन को मुसलसल फिशिंग ईमेल्स भेजे जा रहे हैं। इनका क्या मकसद है? आपकी लॉगिन तफसीलात चोरी करना, सिस्टम्स को रैंसमवेयर से मुतासिर करना या गैर मजाज रसाई? महफूज रहने के लिए हमेशा ये बेहतरीन तरीके अपनाएं। हमेशा भेजने वाले की शनाख्त चेक करें, खसूसन एड्रेस। हमेशा अटैचमेंट की फाइल एक्सटेंशन चेक करें। PTA.txt महफूज है, लेकिन PTA.txt.exe नुकसानदेह साबित हो सकती है। अटैचमेंट खोलने से पहले जरूर स्कैन करें। ईमेल इस्तेमाल करने के बाद हमेशा लॉग आउट या साइन आउट करें। इन खतरनाक आदतों से हमेशा बचें। सरकारी ईमेल को जाती या गैर सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल न करें। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले असल URL जरूर चेक करें। क्लिक करने से पहले एक बार जरूर देखें। अपना ईमेल पासवर्ड किसी के साथ हरगिज शेयर न करें। पासवर्ड, OTP या हसास मालूमात ईमेल के जरिए कभी भी न भेजें। हैकर्स अक्सर फौरी कार्रवाई, धमकी, लालच या झूठे वार्निंग साइंस जरूर देते हैं ताकि आप घबराकर फौरन क्लिक कर दें। अगर कोई ईमेल बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा पुरकशिश और गैर मामूली तौर पर मशकूक लगे तो एक बार जरूर रुक जाएं और इसकी तस्दीक करें। फिशिंग ईमेल से कैसे बचें? अपने आप को और अपने अदारे को महफूज रखने के लिए धमकी आमेज या जज्बाती जुबान वाली ईमेल से मोहतात रहें। नामालूम या शॉर्ट लिंक्स पर हरगिज क्लिक ना करें। भेजने वाले का मुकम्मल ईमेल एड्रेस जरूर चेक करें। अटैचमेंट से खासतौर पर मोहतात रहें, खुसूसन exe.bat.vbs.msi और दीगर एग्जीक्यूटिवल फाइल से लोगो और ग्राफिक्स आसानी से जाली बनाए जा सकते हैं। इन पर अंधा एतमाद ना करें। किसी भी मशकूक ईमेल की फौरन अपने अदारे की IT टीम को इतला करें। आपकी होशियारी ही पहली दिफाई लाइन है। होशियार रहें, महफूज रहें। ये पैगाम पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, PTA।
14: ये मुफाद आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
15: facebook.com/fm247365 fm247365

थी तू जैसे कोई नूर है, कोई नूर है तू, एक फितूर है तू, इतने फासले पर फिर भी कुछ सुकून सा है।

ये सितारे तुम्हारी आंखों के, ये चांद तुम्हारी जबी पर, लगता है उतरे हो तुम किसी आसमां से हमारी जमीन पर।